हम सब मिलकर साईं को कहें कि हम बहुत प्यार करते हैं साईं से। बेझिझक आप हमारे साथ गाएं आई लव यू माय साईं, बहुत आनंद होगा।